अबे दिल फेंक के मारूंगा हर तरफ, शायद तुम्हारे सिवा कहीं और लग जाए।

जुगनी जावड़ी बंबई जिथे सौंदा कोई नहीं सब लभन चीज कोई किस किस लभ।

0: तेरे अंदर एक बच्चा है, वही करेगा।
1: मैं प्रेग्नेंट हूं।
0: अबे नहीं बे, तेरा इनर चाइल्ड, उससे कनेक्ट कर। खाली खुद से खफा होके बैठने से नहीं होगा।

इसे तू मेरे को व्हाट्सएप पे स्माइलिंग फोटो भेज के और फिर इंस्टाग्राम पे भाई जिंदगी में दुख ही दुख है, मौत का इंतजार कर रहा हूँ, ये सब करता ना ब्रो, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ ब्रो कि ये बंदा सच में खुश है या एक्सट्रीमली बकचोद है या बस मजे ले रहा है सबकी।